0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Safo Travel, auto protected.
3: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Leica Radio. Wake up to Kajal every weekday morning on

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Mica Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे grand.
4: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: जो कर्ज में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा. तथास्तु.
10: बिग बॉस 20 स्टार्टिंग फ्रॉम संडे द 6th ऑफ सितंबर ओनली ऑन कलर्स टीवी स्काई चैनल 706 वर्जिन मीडिया 826 EE396.
11: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान. Your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
12: Leica Radio.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
14: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: Back-to-back hits across the Leica Radio network.
1: Leica Radio.
0: Traffic and travel.
2: I'm Simon James. So far for the bank holiday, coping fine on the M1. It's incident-free. Southbound running okay in the roadworks at Leicester Forest East Services. Junctions 21A to 21. Still clear as well for long-term work on the M42 to and from Birmingham Airport between junctions 6 and 9. Expect delays again today around Market Harbour Showground as the Leicestershire County Show continues. That's from 9.30 this morning. That's going to mean some extra traffic on the A6 and Harbour Road. We still have the closure at Stourbridge of Racecourse Lane, blocked to through traffic between Norton Road and Worcester Lane. After recent fires, East Midlands Railway, after a signal fault, delays between Derby and Loughborough and between Nottingham and Loughborough. That's the latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
3: ये है लाइका रेडियो
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Southall
6: Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: I happen to happy valley.
10: It's back and it's bigger.
11: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
10: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
11: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
10: Exclusive charity partner, Go Dharmic. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
13: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
15: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
0: This is Leica Radio across the Midlands.

0: This is Leica Radio.
1: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
5: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.

0: Gaju's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: One performer.
3: Countless personalities.
2: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में था ये गाना, जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था और उससे पहले आपने सुना राम लखन का फिल्म का गीत तेरा नाम लिया तुझे याद किया और आपने मेरा नाम लिया मुझे याद किया और मैं हो गई हाजिर। जी हाँ, ये है मंडे का दिन, बैंक हॉलिडे मंडे, और आज आप सब छुट्टी मना रहे हैं, उठ गए हैं या अब भी बेड में हैं? अगर हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन थोड़ा लेजी होना चलता है। जरूरी नहीं कि हर रोज सुबह सवेरे उठकर रोज के काम में लग जाओ, कभी कभी थोड़ा लेजी भी होना चाहिए, रूटीन से थोड़ा हटकर भी काम करना चाहिए, थोड़ा नयापन लगता है, अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसकी परमिशन है, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं ये बात जरूर पक्की करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपके मैसेजेस तो बता रहे हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ऋतु शर्मा हाजिर है एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और एक बजे तक एक नहीं दो नहीं हमेशा की तरह ढेर सारे गाने सुनवाऊंगी, चिंतन भी होगा और सुनवाएंगे आपको आज की ताजा खबरें भी। पर आगे बढ़ने से पहले ये बता दें,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757. To arrange your meeting.
7: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
6: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. खूबसूरत beaches, sunshine और 8 amazing Caribbean islands आपका इंतजार कर रहे हैं। Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited है तो आज ही book कीजिए. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154 846.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy.
1: Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
11: Ranjishe sahi dil hi dukhane.
12: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
13: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में था ये गाना जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से। और इस शो में आज आप सुन रहे हैं मुझे और मेरा नाम है रितु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपको याद दिला दूं कि आज ही नहीं इस पूरे वीक यानी कि फ्राइडे तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। और आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं, तो चलिए न्यूज सुनाने से पहले एक नजर क्यों ना उन पर डाल ली जाए। तो स्वागत है भरत गंगाराम जी, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने क्या पकवान भेज दिए हैं, क्या बात है, हर हर महादेव आपको भी। आई थिंक भोग लगा रहे कोई पूजा पाठ करके, स्वादिष्ट लग रहा है जो भी आपने फोटो में भेजा है। जय श्री जी, स्वागत है। महेंद्र पटेल जी क्रोइडन में हमारे साथ, मिसेस शेख, संध्या भाव सर क्या प्यारी हो आप, कल आपसे मिलने का मौका मिला और कल हम अनूप जलोटा का शो देखने गए थे और वहां पर जानते हैं संध्या भाव सर मेथी के पकौड़े और ढोकला बनाकर लाई थी और भूख का समय था और ऐसे भूख के समय में अचानक से अगर आपके सामने कोई मेथी के पकौड़े वो भी स्वादिष्ट वाले और ढोकले परोस दे तो दिल से जो दुआएं निकलती है ना वो ही कल मेरे दिल से संध्या आपके लिए निकली। और क्या स्वाद था और कितने प्यार से आप हमारे लिए बना के लाई थी। बहुत मजा आया उन्हें खा कर भी और आपसे मिलकर भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संध्या फॉर दैट। और हमारी बहुत प्यारी लिसनर है संध्या, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू प्रज्ञा, कहती है बैंक हॉलीडे मंडे, मैं तो अभी अभी उठी हूँ तो ठीक है ना, क्या जरूरत है जल्दी से उठ के बैठने की, कहीं जाना नहीं कुछ करना नहीं तो क्या जरूरत है सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ के बैठ जाओ, आराम से उठो पूरा दिन पड़ा है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। तो स्वागत है प्रज्ञा आपका, थैंक यू तोची जी एंड राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं हैप्पी बैंक हॉलीडे मंडे, हम खुश हैं क्योंकि पूरे हफ्ते हमें आपको सुनने का मौका मिलेगा, थैंक यू। और इसके अलावा आपने लिखा है कि आज मेरे कैलेंडर पर ये लिखा है कि उत्साह एक बड़ी शक्ति है और जिसके पास ये है वो कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि जो उत्साह होता है ना वो सभी मुश्किलों को आसान बना देता है। बहुत सही बात आपने सोच समझ कर लिखी है, बहुत खूबसूरत, थैंक यू, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे मृदु जी, अजन जी, शेखर अनन जी एंड ऑफकोर्स हमारे गिरीश जी जो की इंदौर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। और कल आपका गीत, यस मैंने कहा ना जब आप कोई गाना रिक्वेस्ट करते हैं ना तो मैं याद रखती हूँ और मुझे जब मौका मिलता है मैं उसको बजा देती हूँ, सो थैंक यू गिरीश जी, बहुत धन्यवाद। महेंद्र बाजारिया जी और जितने भी साथी घर में, बाहर, गाड़ी में, काम पे, कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है। इसके अलावा गुरुदेव गांजा, आपको भी गुड मॉर्निंग। ज्योति जी एंड ऑफ कोर्स हमारी मालती जी, सभी का स्वागत है। और चलिए अगला गीत आप सबके नाम करती हूँ लेकिन गाना बजेगा आज के प्रमुख समाचारों के उस पार, क्योंकि अब समय है समाचार सुनने का। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। भारत के मध्य प्रदेश यानी कि चित्रकूट में, मध्य प्रदेश का एक शहर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और सड़कें कीचड़ और मलबे से भर गई हैं। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कल रात्रि नई दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम यादव चित्रकूट विकास प्राधिकरण के आश्रय स्थल पर भी पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातें भी की और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। दरअसल उन्होंने बताया कि सेमरावल और मंदाकिनी नदी में बाढ़ की स्थिति है वो तेज बारिश, ज्यादा बारिश के कारण हुई है और नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, उनके सामान को भी काफी क्षति हुई है लेकिन किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से वार्ता के बाद किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और भारत और उज्बेकिस्तान के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करते हुए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सौदे पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्त लिख से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थायी संबंधों को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायोयेव ने प्रदान किया और प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, क्लीन एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों के संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ये यात्रा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और भारतीय सेना के विमान चालकों ने ननकून पर्वत के पास 18,600 फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के बीच एक घायल जवान को सुरक्षित निकाला है। और अब कुछ समाचार विदेशों से। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 यानी कि 788 हो गई है और हाइड्रो पावर सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश अभी जारी है। बाढ़ और जमीन के खिसकने के बाद कई इलाकों में सड़कें और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत अभियान जो कार्यक्रम है वो भी प्रभावित हुआ है और सुरंग में फंसे कर्मचारियों और इंजीनियरों को निकालने के लिए नेपाल सेना के नेतृत्व में करीब 90 सदस्यीय संयुक्त टीम अभियान चला रही है। साथ ही साथ खाने का सामान भी सुरंग के भीतर पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मलबा बेहद ज्यादा होने के कारण बचाव दल रास्ते को चौड़ा करने में जुटा है। भारी मशीनों और नियंत्रित विस्फोटों की मदद से सुरंग के अंदर जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है लेकिन बचाव दल अभी तक सुरंग के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं कर सका है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा आवेदनों पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जिससे भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा। और रशिया ने यूक्रेन के ऊर्जा और गोला बारूद डिपो पर नए सिरे से हमले की चेतावनी दी है जबकि हवाई हमलों में भी भारी नुकसान की खबरें हैं। और यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
2: Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, और फिल्म का नाम हीरा, जिसमें सुनील दत्त, आशा पारेख और शत्रुघ्न सिन्हा, साथ में थी फरीदा जलाल। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले थैंक यू कहते चले हमारे कुछ और साथी जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू शरफोन, गुड मॉर्निंग। मीना लखानी जी, स्वागत है आपका इस शो में। ज्योति जी, हर हर महादेव, स्वागत है आपका इस शो में। जयश्री जी पूछती हैं, ऋतु कल कहाँ गई थी, कौन से शो में? तो कल अनूप जलोटा जी का शो था, हम वो देखने गए थे, और उन्होंने क्या गाने गाए, बढ़िया भजन गाए, गजल सुनाई, गीत सुनाए, सब कुछ सुनाया, और साथ ही साथ उनके हंसाने वाले जोक्स, वो जिसके लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि शो के साथ साथ वो बहुत हंसाते भी हैं, अच्छे अच्छे जोक्स भी सुनाते हैं। तो कल एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, हमने खूब मजा किया, और बहुत सारे लिसनर्स से भी मिलने का मौका मिला। और सच बताऊं, जब आप सबसे मिलने का मौका मिलता है ना, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखने को मिलता है कि जो हमें मैसेजेस भेजते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमें मैसेजेस भेजते हैं, आखिर वो कौन है, उनको देखने का मुझे भी मन करता है। तो बहुत अच्छा लगा, और हम वहां गए थे। जयश्री जी, जासू जी, स्वागत है आपका इस शो में, थैंक यू इस मैसेज के लिए। और अब अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए।
1: ये है लाइका रेडियो।
0: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल। तो घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो साउथ हॉल ट्रैवल के पास दुबई के लिए बढ़िया डील्स हैं, उन्हें कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए ऑन 02085748410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर। ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू, और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
1: One performer.
4: दिल के सामने प्रोसन से कहने, क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
2: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गया।
1: A whole universe of entertainment.
6: Brandon में function रखा हुआ है।
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight.

0: एक नजर।
1: ये थी किशोर कुमार की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक। और प्रज्ञा कहती है कि ऋतु आज बड़े दिनों बाद ये गाना बजाया है। सच कह रही हो, बड़े दिनों बाद आज ये गाना बजाया है। और आपको बता दूं कि ये थी फिल्म एक नजर, जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म थी। और इस फिल्म को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं क्योंकि ये ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। ये इन दोनों के करियर की शुरुआती दिनों की फिल्म थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान जो प्यार की चिंगारियाँ थी दोनों के दिलों में उठी थी, एक नज़र के सेट पर ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को आपस में एक दूसरे से प्यार हुआ था। फिल्म थी एक नज़र, और जिसका कि गीत आपने अभी सुना। यह है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा आपके साथ है और सभी को कहना चाहती है गुड मॉर्निंग। और कंचन लता लाल आप क्या कहती हैं, आप एक गाने की फरमाइश कर रही हैं। चलिए देखते हैं जगह मिलती है या नहीं इस गाने को आज के शो में।
2: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 167 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: The gold rate is 105.9 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
4: Leica Radio.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरी day grand.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Laika Radio.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
0: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Center.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: Tomorrow, Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Are you ready?

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो। इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन लंदन। और आज इस शो में मैं ऋतु शर्मा हूँ आपके साथ, और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। आज के चिंतन में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने जीवन के बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 2 मिनट भी अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, या उनके मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हैं, या उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, या आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं, तो इतना भी काफी है। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा जाकर वहां बैठें, रोज वहां जाएं, रोज कुछ नियम करें। अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं ना, तो वो भी काफी है। लेकिन सच्चे मन से अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, तो ईश्वर आपका ध्यान पूरी लाइफ रखता है। इस बात से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूं कि आपके हर वक्त में, हर हाल में ईश्वर आपके साथ है। और यकीन मानिए कि आपके बुरे समय में तो वो जरूर आपके साथ है, लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है। सुनाती हूँ एक कहानी एक छोटे से बच्चे की। एक बार की बात है, एक बालक जिसे भगवान जन्म देकर धरती पर भेजने वाले थे, मगर वो बालक ईश्वर से जिद करने लगता है कि नहीं, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मुझे वहां मत भेजिए, मुझे आप ही के पास रहना है। मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। भगवान ने बच्चे की बात सुनी, मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, और उसे जन्म और मृत्यु की महत्ता समझाते हुए बताया कि बेटा, तुम्हारा जन्म लेना आवश्यक है। लेकिन उस बालक को यह बात कहां समझ में आने वाली थी। वो काफी देर तक भगवान से जिद करता रहा, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। पर भगवान से कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात तो मान रहा हूं, आप कह रहे हैं तो मैं मृत्यु लोक में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं वहां तभी जाऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या वचन चाहिए। तो वो बालक बोलता है कि भगवान, मृत्यु लोक में मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप हर समय हर कदम मेरे साथ रहेंगे। ईश्वर मुस्कुराए और उससे बोले, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर बालक बोला, लेकिन पृथ्वी लोक पर तो आप मुझे नजर नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान बोलते हैं कि जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तो हमेशा तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के साथ एक और जोड़ी पैर नजर आएंगे, जिसमें से 1 जोड़ी तुम्हारे पैर होंगे और 1 जोड़ी मेरे पैर। बस फिर क्या था, बच्चा इस बात से संतुष्ट हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार भी। बालक का जन्म होता है और उसके बाद जीवन की सांसारिक चीजों में लगकर वो बालक अपनी और भगवान की इस बात को भूल जाता है। और जब उसकी मृत्यु का समय निकट आता है,
अपने आखिरी समय में पहुंचकर उसे अपनी और ईश्वर की वो बात याद आती है, तो उसका मन करता है कि वो इस बात की पुष्टि करे कि क्या सारा जीवन ईश्वर ने उसका साथ दिया था, ईश्वर उसके साथ थे। वो अपनी आंखें बंद करता है और जन्म के समय से दोबारा अपने जीवन को देखना शुरू कर देता है। उसे दिखाई देता है कि हर समय दो जोड़ी कदम उसके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत का दौर था तब उसके जीवन का तब उससे सिर्फ एक ही जोड़ी कदम दिखाई दे रहे थे। ये देखकर, ये जानकर उसका मन उदास हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुखी हो जाता है और मरने के बाद जब ईश्वर के पास पहुंचता है तो रूठ कर उनसे यही सवाल करता है कि आपने ऐसा क्यों किया भगवान, जब मेरे कठिन समय में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरा साथ छोड़कर कैसे चले गए। ईश्वर ने उसकी बात सुनी और कहा कि तुमने कैसे जाना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उसने कहा, वैसे ही जैसे आपने कहा था। जब मैं सबसे ज्यादा मुसीबत में था तब दो जोड़ी कदमों के निशान नहीं नजर आए, तब सिर्फ एक ही जोड़ी कदमों के निशान थे। ईश्वर मुस्कुराए और कहा, जानते हो जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय चल रहा था उस समय तुम्हारा हाल देखकर मेरा मन द्रवित हो गया था और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए वो जो एक जोड़ी कदमों के निशान तुम्हें नजर आ रहे थे ना, वो मेरे ही कदमों के निशान थे, क्योंकि तुम तो मेरी गोद में थे। कई बार हमको लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा समय आ गया है और ऐसे लगता है कि ये समय तो कभी जाएगा ही नहीं, और ऐसा भी लगता है कि क्या भगवान कुछ भी नहीं देखता, इतना दुख जीवन में हमें हो रहा है, भगवान को दया नहीं आ रही। लेकिन जब पीछे पलटकर देखते हैं तो आपको लगता है कि इतना भी बुरा नहीं हुआ, आपके साथ जितना हो सकता था, और ऐसे लगता है जैसे अचानक किसी ने आकर सिचुएशन को संभाल लिया हो। यानी कि जब बुरा समय होता है और वो निकल जाता है, उसके बाद जब हम रियलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि और भी बुरा हो सकता था, पर भगवान ने बाल बाल बचा लिया, अचानक से किसी ने संभाल लिया। और तब ये अचानक से हमें कौन संभालता है, तब ईश्वर होते हैं जो आपको गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हमेशा विश्वास रखिए कि वो ईश्वर हमेशा हर वक्त आपके साथ है और आपका साथ दे रहा है, और ये भी यकीन रखिए कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा।

0: आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। साहिर लुधियानवी ने ये गाना नया दौर फिल्म के लिए लिखा है और जिसमें ये धुन भिटाई है ओ पी नैयर ने, और मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को क्या खूब गाया है। और ये गाना आज के हमारे चिंतन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाना चाहते हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ है, यानी कि भक्ति और सच्चाई के मार्ग में कोई छल या जटिलता नहीं होती है। और ये भी इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और इंसान को दुख या कठिनाई के समय ईश्वर कठिनाई के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा उस पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके धैर्य की परीक्षा जरूर होती है लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलता है। आपको सिर्फ अपने ईश्वर अपने भगवान पर विश्वास रखना है। और यही था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है, ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू बॉबी जी, आपका मैसेज मिला और कल आपसे मिलने का मौका भी मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यस, अनूप जलोटा जी के कॉन्सर्ट में आपसे मिलना हुआ, काफी सालों, आपने कहा 10 साल बाद आपसे मिलना हुआ। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि पिछली बार आपसे कहाँ मिली थी। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड कल आप बहुत अच्छे भी लग रहे थे, मैं आपको कहना भूल गई, सो इट वॉज लवली मीटिंग यू, थैंक यू फॉर योर मैसेज। हरीश खत्री जी, बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। शेखर आनंद जी, आपको चिंतन पसंद आया। गिरीश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने लिखा है कि मैं मानता हूँ अगर जिसने अपने आप को जान लिया वो ये जान जाएगा कि ईश्वर और हम एक ही हैं। अगर वो अपने आप को शरीर मानेगा तो जानेगा कि ईश्वर दूर है, आपके अंदर ही है ईश्वर, ये सबका अपना अपना विश्वास होता है। थैंक यू साथ देने के लिए संध्या भाव सर, महेंद्र पटेल जी, अर्जुन जी, कीर्ति जी, महेंद्र बजारिया जी, जासू जी, अमिता जी, फरीदा गुलाम अली जी, प्रकाश सुथार नॉर्थ होल से, प्रदीप सोलंकी जी, हिमांशु पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। चलिए, समय हो गया है कि चिंतन को समेटा जाए और मस्ती भरे गीतों की ओर लौटा जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So 1 pound ke badle mein aaj aapko milenge 128.75 bharatiya rupaye. Aur yaad rakhiye, ye transfer aapko karwana hoga via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ 1 pound 99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for 2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू। और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड ए फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। टिकट्स जस्ट 5 pounds से स्टार्ट। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल BJ 07957477330। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
10: Tomorrow, Leica Radio begins broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Are you ready?
11: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
10: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. On this week's Leica Extra podcast, Raj Badden and Kush talk to the Diwali story.
12: The three reasons why we did Diwali story. One was to address this issue of mythology. It's not. It's our DNA. It's our history. It's actually 14,350 years old. And really bring Lakshmiji right to where she belongs and relevance to Sita.
10: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
13: Leica Radio.
10: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Bank Holiday Weekend on Leica.

0: देवानंद की फिल्म गाइड से लिया था ये गाना। और जहां तक मैंने पढ़ा है कि ये देवानंद की पहली कलर फिल्म थी जिसे कान फेस्टिवल में भी इनवाइट किया गया था, और गाइड पहली ऐसी फिल्म थी जिसे कान फेस्टिवल में बुलाया गया था। और इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग, इस फिल्म के इस गाने की शूटिंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हुई थी। और मुझे अपनी विजिट याद आ गई जब मैं लास्ट ईयर राजस्थान घूमने गई थी, और वही जगह थी जहां पर वहीदा रहमान ने इस गाने पर डांस किया था। और क्या खूबसूरत विजय स्तंभ है वो, और वो पूरा चित्तौड़गढ़ का किला मुझे याद आ गया। और जब आप भी जाएंगे ना वहां पर और उसे देखेंगे तो आपको बहुत दुख भी लगेगा कि इतनी खूबसूरत चीज को किस बेरहमी से तोड़ा गया है, और इतना तोड़ा गया है कि उसकी नामो निशान मिटा दिया गया है। मैं इमेजिन कर रही थी कि वहां पर जो और पैलेसेस, जो और किले बने हुए हैं जो सुरक्षित थे, वो इतने सुंदर बनाए थे, तो जो तोड़े गए हैं वो कितने खूबसूरत होंगे, ताकि उन्हें पहले तोड़ा गया, बहुत ही बुरी तरह से तोड़कर खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी फिर भी जो भी कुछ बचा कुचा है उसे सहेज कर रखा गया है। और वहां पर वो कुंड भी था जिसमें रानी पद्मावती ने जौहर किया था। पूरी हिस्ट्री वहां जाकर सुनिए, जब वहां के जो गाइड होते हैं वो बताते हैं, तो मन में बड़ा दुख भी होता है, लेकिन देख कर आने वाली चीज है। राजस्थान अपने आप में ही बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मैं सिर्फ 2-3 सिटीज ही घूम पाई, क्योंकि हमारी हर स्टेट इतनी बड़ी है और हर स्टेट में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए कि आप एक विजिट में पूरा नहीं देख सकते। दोबारा ज़रूर प्लान बनाऊंगी राजस्थान जाने का, लेकिन अगर आप भारत जाने की सोच रहे हैं और आप अगर वहां तक नहीं गए हैं कभी, तो ज़रूर होकर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज ये गाना आप सबने पसंद किया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि सुनील ग्रोवर लंदन आने आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। सुनील ग्रोवर को कौन नहीं जानता, उनका शो होने जा रहा है लंदन में एट ओवो अरीना वैमली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर, एंड लेस्टर में एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर। टिकट्स के लिए आप AXX, इवेंट ब्राइट और टिकट मास्टर पर जाकर अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक, ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली .net।

0: ऐसे हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिले जितने वो डिजर्व करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को मौके पे मौके मिलते जाते हैं और कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद भी मौके नहीं मिलते। इसी का नाम दुनिया है और आजकल दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। गाना बहुत सुंदर था जिसे आप सबने पसंद किया, चलिए आप सबके नाम पर किया।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो थैंक यू कहना चाहती हूँ मिसेस पे के चियांग, आप हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद। एंड शुमिला मंगर, थैंक यू साथ देने के लिए। वीरेंद्र चौधरी जी, कल आपने मुझे देखा था वहां पर अनूप जलोटा कॉन्सर्ट में, अरे आपसे मिलना नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आई एम श्योर आपने भी शो को एंजॉय किया होगा। और जैस्मीन हमारे साथ हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं विजय गुडूरी जी, और आपका मैसेज मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आया है जिसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, और इसे होस्ट किया है राजबधन और खुश ने। आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
3: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
4: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
6: Call the Danube Properties London office today on 02 03

0: गाने की धुन को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अलावा किसी और की धुन हो ही नहीं सकती। और उस पर लता जी की आवाज इस गाने में चार चांद लगाती है। और उससे पहले आपने सुना सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज में धमाकेदार गाना, जिसे लिया था सोल्जर फिल्म से प्रिटी जिंटा और बॉबी देओल की फिल्म। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है। और अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपको बता दूं कि मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूँ इस शो में, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और फ्राइडे तक मनोरंजन शो में आपका मनोरंजन मैं ऋतु शर्मा ही करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू। और गुरुदेव गांजा, आप कहते हैं कि आपने मेरा फेवरेट गाना लगाया, कौन सा वाला था? मुझे लगता है वही होगा, तेरा रंग बल्ले बल्ले। चलिए, आपको डेडिकेट किया। और इसके अलावा आप विजय गुडूरी जी, आप हमारे साथ हैं और आपने बताया है कि अनूप जलोटा कॉन्सर्ट आपने देखा था लास्ट ईयर बैक थिएटर में। और अनूप जलोटा वाकई में गुड एंटरटेनर हैं, और मैंने उन्हें बहुत साल पहले आई थिंक O2 इंडिगो में देखा था पहले, और एक बार वो हमारे स्टूडियो में भी आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में परफॉर्मर होते हैं, यानी सिंगर तो हैं ही, उसके साथ वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, जो वर्क सुनाकर आपको बिल्कुल बांधे रखते हैं। और इसी तरह से मुझे एक और बहुत पसंद है, उदित नारायण जी। उनके भी गाने जो मैंने उन्हें सुना था कुछ साल पहले जब वो आए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि रिकॉर्डिंग चल रही है, इतना सुर में उन्होंने गाया कि मैं उनकी पहले ही फैन थी और ज़्यादा हो गई। और मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि दोबारा उनका शो जो होने वाला है वो कब होगा और हमें उन्हें कब सुनने को मौका मिलेगा। एनीवेज, हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको भेजी ही जाती हैं, लेकिन जो हमारे साथ दे रहे हैं उनको बताते चलें कि आज कजली तीज भी है। हमारे भारत में हर दूसरे तीसरे दिन बहुत त्यौहार होते हैं, और ख़ास तौर पर ये सावन भादो आषाढ़ का जो महीना होता है इसमें तो ढेरों त्यौहार होते हैं। तो अगर आप मनाते हैं आज, तो आपको बता दूं कि आज कजली तीज है। और ये जो त्यौहार है वो विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है, यानी कि जो भारत के दिल के आसपास वाले जगह है ना, वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इन जगहों पर तीज त्यौहार कुछ ज़्यादा ही मनाए जाते हैं। इस त्यौहार में सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, और जो अविवाहित लड़कियां हैं वो योग्य वर के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो अगर आज आप कर रहे हैं तो आपकी पूजा महादेव एक्सेप्ट करें और उसका आपको फल मिले। और उसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी भी तो आने वाली है, लेकिन इस जन्माष्टमी में आपके साथ होंगी तो साथ मिलकर धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी इस बार है 4 सितंबर की। वैसे तो आजकल सारे त्यौहार दो दो दिन मनाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 4 सितंबर को है। अब यहाँ किस दिन मनाई जा रही है वो पता लगाना पड़ेगा। मैं भी लगाऊंगी, आप भी लगाइए, और आपको पता चल जाता है तो मुझे बताइए, और मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फारूक जी, आप हमारे साथ हैं। और पूछ रहे हैं ऋतु शर्मा है क्या? हाँ, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ। अब रवि शर्मा जी की आवाज़ तो ऐसी है नहीं ना, मेरी आवाज़ उनकी जैसी है, तो मैं ऋतु शर्मा ही हूँ। स्वागत है आपका इस शो में। और इसके अलावा साक्षी हमारे साथ जुड़ी है, सो थैंक यू साक्षी। और कहती हैं आज मेरे बेटे का बर्थडे है जिसका नाम है संस्कार। वाओ, कितना खूबसूरत नाम है आपके बेटे का। चलिए, पूरी फैमिली की ओर से, मम्मी पापा की ओर से संस्कार, आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां। और अगला गाना कौन सा है? अगला गाना तो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाला गाना है, तो संस्कार की मम्मी जी के नाम कर देंगे ये गाना, ठीक है?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना पड़ेगा वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Laika Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फैल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
5: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
6: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
7: It's back and it's bigger.
8: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
7: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
8: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
7: Exclusive charity partner, Go Dharmic. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574-8410।
14: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
15: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
16: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
17: भोजपुरी बवाल।
18: पवन जी, मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
19: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
20: हाँ, सही झगड़ा चला था भाई।
21: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
22: लाइक अ गोल्ड, ऑफिशियली लंदन नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अवेलेबल इन ग्रेटर लंदन ऑन 10:35 AM, DAB डिजिटल रेडियो, एलेक्सा एंड likeagold.com।
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी का आवाज थी और माला सिन्हा पर पिक्चराइज था ये गाना, फिल्म आंखें से लिया था, जिसमें पंडित रवि शंकर शर्मा का म्यूजिक था और इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक माला सिन्हा ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि कविता कृष्णमूर्ति भी लंदन आ रही हैं परफॉर्म करने के लिए एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर। और ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स बुक कराने के लिए आप वेन्यू बॉक्स ऑफिस से टिकट्स बुक करा सकते हैं और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क। और अब सुनवाने वाली हूँ अगला गाना मन्ना डे की आवाज में।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चलिए मन्ना दा की आवाज में हमारी जितनी भी जोहरा जबिया ये गाना सुन रही हैं आप सभी के नाम पर जाता है। और अगला गीत मुकेश जी की आवाज में है और वो गाना भी बड़ा खूबसूरत है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे साथियों का पसंदीदा सॉन्ग होगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको याद दिला दूं कि स्टेज पर होने वाला जो दिवाली स्टोरी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ओवो अरीना में होने जा रहा है और ये होगा संडे 27 सितंबर को। टिकट्स आप बुक करा सकते हैं diwalistory.com पर जाकर। और इसके भी एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और देखिए ये जो गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसमें वही बात है जो केबीसी में अमिताभ बच्चन हर बार कहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि पत्नियों से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे बहस कर आप कभी जीत नहीं सकते। उनसे तो बस यही कहना चाहिए जो कुछ इस गाने में मुकेश जी कह रहे हैं। जरा सुनिए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

मुकेश जी के आवाज में ये गाना परविंदर मथारू चाहते हैं कि उनके कॉलिग्स पॉली और राज को डेडिकेट किया जाए। बिल्कुल, ये गाना उन दोनों को डेडिकेट कर देते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप हॉलिडे जाना चाहते हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए ऑन 02085748410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: weekdays for the Midlands at breakfast and drive. Yeah.
1: Like a radio. Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड And

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: The gold rate is 105.92 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: तो लीजिए आज का साथ पत यहीं तक. अगला गाना आपको लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार बाली ब्रह्मभट आपका साथ देंगे. लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.
5: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर।
1: कैच अनीसा नासिर एज़ शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क.
2: गेट वेल सून क्रुणाल.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: So there you go, Rita Christina. And I'm getting so many other names from all of you. I shall try. Yes, Monica. How could I forget Monica?
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड.
1: Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Laika Radio. Email sales@laikamedia.co.uk.
0: Yes, of course. Your favorite Chin Chin Chu, Howrah Bridge, Geeta Dutt. और मैं क्या कहूँ आगे और कहूँ. वेल, गाना सुन लीजिए ना. ओपी नैयर का संगीत और कमर जलालाबादी की लिरिक्स है. एंड डांस अवे और क्लैप अवे और टैप योर फीट अवे बट एंजॉय इट. किचन में हो, बेडरूम में हो, रस्ते पे हो, एंजॉय लाइका गोल्ड विद मी बाली ब्रह्मभट्ट.

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम

है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, नीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: देयर यू गो, चमेली भी नाम आ गया। एंड रफी साहब क्या कह रहे हैं? लता जी ने कहा मेरा नाम चमेली, और रफी साहब ने एक लड़की को पुकारा और क्या कहा, उसको बुलाया कविता। Yeah, so listen to that one. And next it's going to be Sandy Shah. Enjoy company with him.
1: It's summer on the Leica Radio Network.
0: And it's going to be Anika on Leica Radio Midlands. Bali Brambatkar, namaskar.

0: जिंदगी।
1: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
2: You know how fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानी क्या।
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: द डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।

0: क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: surplus ab hai stop loss.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: शिव शंकर किशोर दा और लता जी की आवाज के साथ सच ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक इज़न्ट इट. नाउ दिस वन हैज़ ओरिजिनली कम इन एज़ ए मंडे मोटिवेटर रिक्वेस्ट. हाउएवर बिकॉज़ आई प्ले माय गोल्डन जेम इन द फर्स्ट आवर ऑफ द शो मैंने अभी बजा दिया. सो अमित दिस वन वाज फॉर यू एंड ऑफ कोर्स द फिल्म नेम. यू नो व्हाट, यू ऑल हैड इट राइट, बट हु वाज द फर्स्ट वन? लेट्स हैव अ लुक. You know, I'm going to have to check these ones out. But lots of love. Okay, that's everyone that's logged in and listening. Pooja, lots and lots of love to you as well. I did. I had a wonderful break. Well done, Cham. You were the first one in with the right answer. The film was Aapkika Samaragini. Lots and lots of love to you as well. Saying, hope you had a great holiday, Radio Wali. Welcome back. Dabbling, lots of love going out to you as well. Jitendra Ji saying, Radio Wali, welcome back. A fantastic start to the show. And my para cuckoo was dancing away as well. Ay, hai, kya बात है. अभी मैं इंसानों को तो वैसे ही नचाती थी, अभी मैंने प्राणी और पक्षों को भी अपनी कैद में वश कर लिया. क्या बात है.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is trading at £105.24 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: Right, let's do this. We're going to go for two beautiful tracks back to back, followed straight by a competition. Wait. Jumbo, baby!

0: Such a beautiful track, isn't it? From the movie God and Gun. Getting you ready for that 90s at night that's happening tomorrow. You know what? Even my beautiful Saathidar knows that this is my favourite 90s ka gaana, so when she plays this song, of course I'm talking about Anisa Nasir. She also says that, yaar, mujhe pata hai, ye radio wali ka favourite gaana hai. But now I can finally play a song that I have waited for. वो इशारे कर रही है कि मुझे पता है कौन सा गाना है. मैं 4 महीने 14 दिन और कितने घंटों से वेट कर रही हूँ कि मैं ये गाना बजा सकती हूँ, क्योंकि उनके बिना ना ये गाने में वो फील नहीं है, वो मज़ा नहीं है. मैंने एक्चुअली यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक अगस्त के बिगिनिंग में जब मैं आपकी बात कर रही थी, कुछ मैंने कुछ शायरी की थी, मैंने हाँ अटेम्प्ट मारी थी, क्योंकि आपके काफ़ी लिसनर्स बोल रहे थे कि जब तक अनीसा जी नहीं है हम आपके पास आइए, तो उनको खुश करने के लिए मैंने कुछ टूटा फूटा अटेम्प्ट कर लिया था, यू नो गुस्ताखी माफ. और मैंने ये गाना बजाने का सोचा, और सच बताओ गाने के 30 सेकंड बाद ना मैंने वॉल्यूम ही बंद कर दिया, बिकॉज इट डिड नॉट हैव द सेम फीलिंग. ऑफ कोर्स यू नो व्हिच ट्रैक आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज द फील गुड ट्रैक ऑफ द आवर.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.
0: गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बगल वाले स्टूडियो में वॉल्यूम ब्लास्ट हो रहा है. Dedicating this one to our beautiful Anisa Nasir, finally back on air. Welcome back, my lovely.

0: Mica Radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
3: It's back and it's bigger.
4: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
4: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: This is Laika Radio.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
3: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल